0: महल।
1: ओ यार ना आता दस दे।
0: स्वीट महल स्वीट महल स्वीट महल।
2: टॉप क्वालिटी आला साफ सुथरा वेज ते नॉन वेज खाना। 100 to 1000 बंदिया दी केटरिंग ली पूरा इंतजाम। स्वीट महल दे नवे ते 300 केटरिंग ट्रक विच। स्वीट महल रेस्टोरेंट इन रेक्सडेल 416-679-9999।
0: स्वीट महल।
3: बेड डाइनिंग टेबल सोफा कर ले लेना या देना तोहफा।
4: हाई एंड डिजाइन एंड क्वालिटी यानी हाई पॉइंट फर्नीचर कस्टम मेड कनेडियन मेड इम्पोर्टेड फर्नीचर ले आज ही विजिट करो हाई पॉइंट फर्नीचर
3: 7550 किम्बल स्ट्रीट मिसिसागा। कॉल 6473825500।
5: ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ।
6: ਓ ਜੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ।
7: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਂਟ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ ਐਲਈਡੀ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ ਫਲਾਵਰ ਐਂਡ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ 360 ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਟ੍ਰੈਕਟਿਵ ਟੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ।
6: ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ 6477080079
8: इंजन रीबिल्ड ट्रांसमिशन रीबिल्ड रिपेयर डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर इलेक्ट्रिकल रिपेयर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ए टू जेड सर्विस करके देंगे।
9: इना कोड़ा सालना दा तजर्बा।
8: हुन एड्रेस भी लिखा।
9: मैं लिख ला 1 गुड मार्क प्लेस इटोबिकोक यूनिट 5।
8: कॉल 6477069257 6477069257।
10: ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ। ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸਵਾਦਲੇ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਫੂਡ ਦਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾਓ। ਲਾਲੀ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਓ। ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਵਾਦਲੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਫੂਡ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਲਾਲੀ ਸਵੀਟਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਨ ਇਨ ਜਾਂ ਟੇਕ ਆਊਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗ੍ਰੇਟ ਫੂਡ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਲਾਲੀ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪਹੁੰਚੋ 499 ਰੇ ਲੌਸਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਬ੍ਰੈਮਟਨ। ਕਾਲ 905-4504-506464।
11: लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट।
12: हाय मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे। मेरी निक्की भैन का व्याह मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी।
13: क्यों नहीं चन करे कहे ता सिर तो पैर तक सोने चमड़ा दें।
12: ठीक है जी चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल। उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने सेट रानी हार छापा मुंदरियां छल्ले बिस्कुट चेनिया वंगा कोके टिक्के कड़े ब्रेसलेट मंगलसूत्र सब कुछ प्योर ते यूनिक।
13: हां नाले मैं साड़ी दियां बाहां भी तां मिंगियां करनियां ने 12 चूड़ियां ओनू भी ले दांगे।
12: तो मेरे जीजे ली घड़ी
13: आहो अशोक ज्वेलर कोले रेडो दियां रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने।
12: चलो फिर छेती चलो अशोक ज्वेलर 7198 रोड माल्टन इन अशोक प्लाजा। फोन नंबर है 9056714290।
14: इस हॉलिडे सीजन अपनी हर पार्टी के लिए लव साथ को अपना साथी बनाओ।

0: साउथ से केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांबर, उत्पम, डेजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca। लव साउथ।
1: तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो, CNN टोरंटो।
2: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.

श्री जमात 1320 एम फ्रीक्वेंसी रेडियो प्रोग्राम टीवी प्रोग्राम रंगला पंजाब में आपके होस्ट चंदोर संजू सिक्का पेशे खिदमत है आपकी नजर में आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले आपका तापमान राइट में 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, कल का हाईएस्ट 25 रहेगा, लोएस्ट 17 और कभी धूप कभी छांव। खबरों की सुर्खियां आप सबकी खिदमत में। एक्सपर्ट्स का क्या मानना है जो इतनी भीषण स्टॉर्म हिट की थी टोरंटो में कल, जिससे काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ और कम से कम 100 साल के बाद ऐसी स्टॉर्म देखने को मिली है। काफी भयंकर स्टॉर्म थी जिससे कि बहुत ही भीषण बारिश हुई और बहुत ही ज्यादा हवाएं चली जिससे काफी नुकसान हुआ, बर्फ के गोले गिरे कनाडा की लार्जेस्ट सिटी में जिससे पावर थी आउट हुई और मेजर हाईवेज में फ्लडिंग हुई इन टोरंटो इंक्लूडिंग डॉन वैली पार्क। कहते हैं कि ह्यूमिडिटी और इसके साथ गर्मी के कारण इतना भारी नुकसान हुआ जिसकी वजह से टोरंटो भी आया। हाईवे 401 वेस्ट बाउंड बंद है ओशवा में फॉलोइंग क्रैश और

0: शॉर्टली किंग की राजगद्दी संभालने के बाद मई 2023 के बाद यह आया है। इससे पहले क्वीन एलिजाबेथ की फोटो थी जिसको रिप्लेस किया जा रहा है। इसके साथ 41 वर्षीय व्यक्ति एक ऑन्टेरियो का, उस पर इल्जाम है कि उसने 5 औरतों के साथ धोखा दिया रोमांस स्कैम में और $1 मिलियन से ज्यादा उनकी चपत लगाई। अभी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है। और ऑनलाइन टिकट सेलर को फाइन किया है फोर्ड सरकार ने, और हम सारे जानते हैं कुछ टिकट सेलिंग के भी प्रोग्राम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन हो चुके हैं। ऑन्टेरियो ने इश्यू कर दिया पहली बार, कुड बी द फर्स्ट फाइन अगेंस्ट टिकट रीसेलिंग प्लेटफॉर्म प्रोविंस में एंटी स्केलिंग लॉ को लेकर। और प्रोविंस के कंज्यूमर बिवेयर वेबसाइट स्टेट में सीट गीक कैनेडा को फाइन किया $25,000 का लेट ऑगस्ट में। उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने $10,000 तो है जिसमें उसने बताया नहीं कि फेस वैल्यू क्या है टिकट की, $5,000 का डिस्क्लोज नहीं किया ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टिकट और अदर $10,000 पे इल्जाम है। उन्होंने ट्रांजैक्शन को किसी प्रूफ ऑफ ओरिजिनल प्राइस के बगैर बेचा। गोल्फ का मेयर जो है काफी हैरान हुआ जब वो पहुंचा थ्रिफ्ट स्टोर में, उसने देखा डार्ट बोर्ड बना हुआ है जिसमें उनकी तस्वीर है और उन्होंने इसको काफी पॉजिटिव लिया। उन्होंने ये कहा कि जो इस वक्त ये तस्वीर बना के डार्ट बोर्ड बना सकते हैं उनको ये पैसा चैरिटी में ही देना चाहिए। एक औरत जिसके कुत्तों ने एक 11 साल के बच्चे को मार दिया था एडमिंटन में, उसको सेंटेंस किया गया 2 साल का हाउस अरेस्ट। ईरान के साथ हम वॉर में नहीं है, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने कहा है। वैंस ने कमेंट किया जबकि काफी ज्यादा एक रोष हो रहा है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्राई करें ड्रॉ करने का लाइन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, और वैंस ने इसमें कोई शूटिंग नहीं चल रही, ये वॉर नहीं है। व्हेल मछली को ट्रांसफर किया गया था मरीन लैंड से शिकागो में, वहां पर दूसरी मछली जो है व्हेल मछली उनकी मौत हो गई जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके साथ ही साथ अगर कुज्मा से यूएस चला जाता है तो क्या होगा, एक रिपोर्ट सजेस्ट करती है। डिलॉयट कनाडा की तरफ से रिपोर्ट आई है फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड पैक कि अगर कनाडा को और ज्यादा मेजर्स लेने चाहिए अपना ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की बजाय, उसके साथ साथ इंटर प्रोविंशियल ट्रेड बैरियर्स को हटाना चाहिए जो कि प्रोविंस और प्रोविंस के दरमियान है, नई इंडस्ट्रीज की आमद देखनी चाहिए और इसमें टैरिफ जो है अगर लगे तो कनाडा जो है सर्वाइव करे। कनाडा रश नहीं करेगा अपने उस निर्णय के ऊपर F-35 डील्स को, अभी जहां पर यूएस ट्रेड टेंशन चल रही है कहा है डिफेंस मिनिस्टर ने। वोटर्स इस वक्त थर्सडे को 3 ऑन्टेरियो के बाय इलेक्शन में आगे बढ़ के वोट डालने के लिए गए हुए हैं और कैंडिडेट एक्सपेक्ट कर सकते क्लोज रेस इन हैमिल्टन स्टोनी क्रीक। कंजर्वेटिव नील लम्सम रिटायर हुए थे अगस्त में स्कार्बरो साउथ वेस्ट में। और इसके साथ साथ आइए जानते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लेटेस्ट राउंड ऑफ टैरिफ्स को लेकर, कैंडिडेट्स में भी प्रोविंशियल इश्यूज को लेकर भी बात चल रही है। मस्क लॉन्च करने जा रहे हैं, आइए जानते हैं एक डिफरेंट ही कुछ मूव है उनकी, स्टेयरिंग व्हील फ्री टैक्सी, और बेट करे राइडर्स को कि नो कंट्रोल जो है आपको इससे डरना नहीं चाहिए। वो लेके आए हैं न्यूयॉर्क की सड़कों के ऊपर आपके लिए टैक्सी राइड्स जो कि व्हील फ्री होंगी। ये था खबरों का खास बुलेटिन आप सबकी खिदमत में, देख रहे हैं आप सुन रहे हैं आप रेडियो प्रोग्राम रंगला पंजाब में, आपकी होस्ट एंड दोस्त अंजू सिक्का।
1: तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो।
2: प्रोग्राम का हिस्सा स्वीट मेल प्रेजिडेंट कन्वेंशन सेंटर दे सुखराज कंग होना वालों स्पॉन्सर किया जा रहा है 416-6979-99 साथ दे रहे ने इरड़ फर्नीचर तो जैसमैन रोहित 5200 डिक्सी मैथसन ते वाकया ने क्वालिटी का फर्नीचर वाजब रेट ते लैके आने लई इरड़ फर्नीचर 5200 डिक्सी मैथसन 905-232-7499 कैलेडन पेविंग रेजिडेंशियल कमर्शियल इंडस्ट्रियल ड्राइवे पार्किंग लॉट ट्रक टर्मीनल सर्विस स्टेशन आदि लई कैलेडन पेविंग दे नाल राबता कायम करो भाई जसपाल 416-818-9900 पील रेनोवेशन दे सरदार भुपिंदर सिंह जी एक हफ्ते विच तुसी अपना कंप्लीट फुल प्लेज वाशरूम तैयार करना है एस्टीमेट बिल्कुल फ्री है करबलेस शॉवर भी तैयार करदे ने 647-648-1847 ते ट्रैफिक कोड एडवोकेट जे कलोटी साहब ट्रैफिक दी उलंघना होने दी सूरत विच कोई टिकट मिल गई है ओदी प्रोपर पैरवाई करवाउण लई 79B फ्रंटेरियो स्ट्रीट बफलो प्लाजा नंबर 416-716-3464 शाह ट्रांसपोर्ट हायर करा जी इमीजिएटली ओनर ओपरेटर टीम कंपनी ड्राइवर टीम कंपनी ड्राइवर सोलो कॉन्स्टेंट लोराडो टैक्सिस दे रन ने स्टडी माइल्स मिलेंगे रिलायबल वर्क है शाह ट्रांसपोर्ट संदीप जी नूं 416-903-8390 ते कॉल करो अते लाली स्वीट्स एंड तंदूरी रेस्टोरेंट 499 रेलासन ते मिकलोगलन दा एरिया ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਟੇਕ ਆਊਟ, ਕੇਟਰਿੰਗ, ਲਾਈਵ ਓਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਜੀ ਟੀ ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਫਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜੀ ਤਿਆਰ

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320
1: We are the sounds of the streets.

0: मुस्कुराकर।
1: शहर की आवाज दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: हम भी दिमाग से चले होते तो आज ना ही तुम हंसते और ना ही हम रोते.
1: Your voice, your community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.
2: इस मुबारक मौके पे बेबाक है आरज़ू, बुलंद है हौसले. आवाज मिटा दे देश परदेश के सारे फासले.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: खत्म।
1: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320।

आता न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

कुछ तस्वीरें ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे। गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।

तुम्हारी तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320. The voice of the city.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल, जमाने में दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: बच्चों को चूस कर गुठलियां फेंक दी है।
1: पिंड चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे, राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे, पंडता खाली कितड़ बहनू रेला आउणगियां, हुण नी जज जमानत दिंदा।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: शहर दी आवाज, दिलां दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार। आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इत्थे तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अप्लायंसेस लगवाना चाहुंदे हो, डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। नंबर 905-799-0045 905-799-0045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल, दुनिया दे किसी भी देश जान वास्ते हवाई सफर दे प्रबंधां दे नाल पीआर कार्ड, कैनेडियन सिटीजन या ओसीआई ली अप्लाई करन दे नाल विजिटर टूरिस्ट या सुपर वीजा दी इनसोर्स करोना चाहुंदे हो तां मिलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 2883 डेयर रोड एट एयरपोर्ट रोड 4550 ईवन जीरो जून 12 इन ब्रैम्पटन और कॉल अवतार कटारिया 9056781200 905-678-1200। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
3: वाह गिल साहब, ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी, उपरो एनी सारी एनर्जी, ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है?
4: ओ यार काव्या, होमो केयर, होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ।
5: जी कर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसे होर पैथी नाल ना कर पाए होवो ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो। बीमारी पावे कोई भी होवे, कॉल करो
6: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड यूनिट 104 ब्रैम्पटन।
7: घर होवे या ऑफिस, ड्राइववे या पार्किंग लॉट्स, शॉपिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट, पाथवेज पेविंग ले परफेक्ट है कैलिडन पेविंग।
8: एक्सेस रैंप्स, एक्सकावेशन, ग्रेडिंग, रीसर्फेसिंग, ओवरले फार्म, ड्राइववे पेविंग, ये सब कर देने। आज ही कॉन्टेक्ट करो जसबल नू, इट्स 416-818-8900
7: और विजिट www.calidonpaving.com।
9: पंजाबी दिल, अंग्रेजी वाइब, CJMR इज बैक अलाइव। CJMR 1320 आ गया होए, छा गया होए।
10: शादियां व्याहां वाले मौके आंदे उत्ते पता लगता नहीं सच्ची काम काज दा।
11: ओ जी, इनफिनिटी टेंट सेंटर कोल वालियां दी हुंदियां तां तैयारियां दी कोई टेंशन ही नहीं।
12: इना कोल टेंट, टेबल, चेयर, एलईडी डांस फ्लोर, फ्लावर एंड डेकोरेशंस, 360 डिग्री कैमरा, सब कुछ मिलेगा। इना कोल छोटे वड्डे हरेक फंक्शन लई अट्रैक्टिव टेंट्स अवेलेबल ने।
11: बुकिंग लई कॉल करो इनफिनिटी टेंट सेंटर कोल 6477080079 6477080079।

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुल्यो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, 1133 क्रेडिट स्टोन रोड, वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: पिछले 20 सालों तो कस्टम वुडवर्किंग दिया प्रोफेशनल सेवावां प्रोवाइड कर रहा नाम मेपल वन किचन एंड बाथ इंक गूगल ते 5 स्टार रेटिंग हासिल कर चुकी वुडवर्किंग कंपनी द्वारा। अगर तुसी अपने घर दी हाई एंड किचन कैबिनेट, क्लोजेट, बार, टीवी यूनिट या डॉक्टर ऑफिस, डेंटल ऑफिस, ऑप्टिकल स्टोर दी वुडवर्किंग दा काम अपने बजट ते समय सिर करवाना चाहते हो तो चेते रखो मेपल वन किचन एंड बाथ इंक 173 एडवांस बुलेवार जूनट 34 ब्रैम्पटन और 9054580075 9054580075 मेपल वन किचन एंड बाथ इंक।
3: सत श्री अकाल जी, मेरा नाम हैगा या गुरदीप सिंह ननुआ। आई एम अ लॉयर एट ननुआ एंड यूएफए लॉयर्स।
4: इफ यू आर इन्वॉल्वड इन अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, स्लिप एंड फॉल और एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट रिजल्ट्स इन पर्सनल इंजरी, प्लीज लेट अस नो, वी कैन हेल्प।
3: ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ
2: 6477936889। ਜੀਉਣਾ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋ ਰੀਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰੈਕਸਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸੀ 6475471888 6475471888। ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ।
5: ਨੰਗੇ ਆਏ ਤੇ ਨੰਗਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਨ ਤੇ

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: पिज़्ज़ा मशीन दी स्टील ते मिकलोगन वाली लोकेशन ते इस सैटरडे संडे दो लार्ज पिज़्ज़ा विद द तुहाडे मन पौंदियां थ्री टॉपिंग ईच नाल सिर्फ ते सिर्फ $19.99 दे विच कैश डील पिकअप कर सकदे हो। ए डील इस लोकेशन ते ही मिलेगी, 373 स्टील्स एवेन्यू एट मिकलोगन, शेरिडन कॉलेज दी बैक साइड, गिहिला ऑफिस वाला प्लाजा। विदेरे जानकारी लोकेशन दा नंबर है 905-456-3343 9054563343। पिज़्ज़ा मशीन।
3: ओ हेलो यार, मेरा भी लोड लै जी, ट्रक फिर खड़ गया यार।
4: ओ भरावा, हैप्पी बडियाल ते सुखा टेसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा।
3: सच्ची?
4: ओ मुच्ची,
3: फेयर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बडियाल ते सुखा टेसी, जो के इंजन रीबिल्ड, ट्रांसमिशन रीबिल्ड, रिपेयर, डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ए टू जेड सर्विस करके देंगे।
4: इना कोला सालां दा तजुर्बा।
3: हुन एड्रेस भी लिखा।
4: लै लिख ला, 1 Good Mark Place, इटोबी कोक, यूनिट 5।
3: कॉल 6477 06 9257 6477 06 9257।

0: bumper, deer bumper, diesel tank lock, trailer ramp, tire rack, trailer repair, aluminium plate bumper.
1: Call Sunny Mataru
2: 647-4605-6355.
1: Mataru Welding, Unit 1, 98 Rutherford.
3: Mataru Welding.
4: अगर तुहाडे बेसमेंट दे विच पानी दी लीकेज हो रही है तुसी उस तो छुटकारा पाना चाहुंदे हो तां इक्को इक नाम नूं याद रखना पिछले 25 सालां तो कम्युनिटी दे विच मन्निया परमन्निया नाम बेस्ट रेनोवेशन दे सतविंदर सिंह 416-451-4565 25 साल दी दिंदे ने नाल वारंटी 416-451-4565 ते कॉल करो ते हमेशा हमेशा लई पानी दी लीकेज तो पाओ छुटकारा
5: पिज़्ज़ा मशीन दी स्टील ते मिकलोगलन वाली लोकेशन ते इस सैर संडे दो लार्ज पिज्जा विद तुहाडे मन पौंदियां थ्री टॉपिंग ईच नाल सिर्फ ते सिर्फ $19.99 दे विच कैश डील पिकअप कर सकदे हो। ए डील इस लोकेशन ते ही मिलेगी 373 स्टील्स एवेन्यू एट मिकलोगलन शेरडन कॉलेज दी बैक साइड गिहिला ऑफिस वाला प्लाजा। वधेरे जानकारी लोकेशन दा नंबर है 905-456-3343 905-456-3343 पिज्जा मशीन।
6: खुशियां ते जश्न बनाओ ते रुसियां नू मनाओ अपनियां नाल बैठ के ताजे स्वादले जायकेदार फूड दा लुत्फ उठाओ। लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट आओ ताजियां स्वादलियां मठियाईयां अते जायकेदार फूड लई हमेशा याद रखो लाली स्वीट्स जित्थो तुसी डाइन इन या टेक आउट भी लै सकते हो। ग्रेट फूड बेस्ट सर्विस लई लाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पहुंचो 499 रे लॉसन बुलेवार्ड ब्रैम्पटन कॉल 905-450-6464
7: Lali Sweet and Restaurant Lali Sweet and Restaurant
8: Tusi sun rahe ho Chawla News Network Toronto।
9: इस holiday season अपनी हर party के लिए Love South को अपना साथी

0: केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांबर, उत्पम, डेजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca।
1: लव साउथ।
2: घर होवे या ऑफिस, ड्राइववे या पार्किंग लॉट्स, शॉपिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट, पाथवेज पेविंग ले परफेक्ट है कैलिडन पेविंग।
3: एक्सेस रैंप्स, एक्सकावेशन, ग्रेडिंग, रीसर्फेसिंग, ओवरले फार्म, ड्राइववे पेविंग, ये सब कर देने। आज ही कांटेक्ट करो जसबल नु, इट्स 416-818-8900
2: और विजिट www.calidonpaving.com।
4: बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा, कर ले लेना या देना तोहफा।
5: हाई एंड डिजाइन एंड क्वालिटी यानी हाई पॉइंट फर्नीचर, कस्टम मेड, कनेडियन मेड इंपोर्टेड फर्नीचर ले आज ही विजिट करो हाई पॉइंट फर्नीचर,
4: 7550 किम्बल स्ट्रीट, मिसिसागा। कॉल 6473825500।
6: अब पंजाबी आ गया।
7: तुसी सुन रहे हो एशियन विजन अर्श चावला दे नाल।
8: ना हीरे ना, ए इश्क हुण नहीं निभना।
9: इंजना खिरांजिया, मैं ता तेरे लिए पिज़्ज़ा मशीन तो थिन क्रस्ट चीज पिज़्ज़ा लेके आई हां।
8: हीरे, दो लार्ज पिज़्ज़ा, 4 टॉपिंग ईच, 2 डिपिंग सॉसेस ऑर्डर करना सी, सिर्फ $25 च अपन दोहां ते चाचे कैदो ने भी रजना सी।
10: टेस्ट विद सुपर, हर कोई पिज़्ज़ा मशीन दा है लवर।
11: पिज़्ज़ा मशीन दो लोकेशन तो सर्व कर देने, 2 फिलोसफर्स ट्रेल ब्रैम्पटन, अक्रॉस ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल,
10: 373 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, शेरिडन कॉलेज बैक प्लाजा। कॉल 905-490-1222।
12: रिट्स फर्नीचर दा ए मैसेज जरा ध्यान नाल सुनो।
13: सस्ते

0: केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांबर, उत्पम, डेजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca।
1: लव साउथ।
2: घर होवे या ऑफिस, ड्राइववे या पार्किंग लॉट्स, शॉपिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट, पाथवेज पेविंग ले परफेक्ट है कैलिडन पेविंग।
3: एक्सेस रैंप्स, एक्सकावेशन, ग्रेडिंग, रीसर्फेसिंग, ओवरले फार्म, ड्राइववे पेविंग, ये सब कर देने। आज ही कांटेक्ट करो जसबल नु, इट्स 416-818-8900
2: और विजिट www.calidonpaving.com।
4: बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा, कर ले लेना या देना तोहफा।
5: हाई एंड डिजाइन एंड क्वालिटी यानी हाई पॉइंट फर्नीचर, कस्टम मेड, कनेडियन मेड इंपोर्टेड फर्नीचर ले आज ही विजिट करो हाई पॉइंट फर्नीचर।
4: 7550 किम्बल स्ट्रीट, मिसिसागा। कॉल 647-382-5500।
6: तुसी सुन रहे हो एशियन विजन अर्श चावला दिनार।
7: ना हीरे ना, इश्क हुण नहीं निभना।
8: इंजना खिरांजिया, मैं ता तेरे लिए पिज़्ज़ा मशीन तो थिन क्रस्ट चीज पिज़्ज़ा लेके आई हां।
7: हीरे, दो लार्ज पिज़्ज़ा, 4 टॉपिंग ईच, 2 डिपिंग सॉसेस ऑर्डर करना सी, सिर्फ $25 च अपन दोहां ते चाचे कैदो ने भी रजना सी।
9: टेस्ट विद सुपर, हर कोई पिज़्ज़ा मशीन दा है लवर।
10: पिज़्ज़ा मशीन दो लोकेशन तो सर्व करदे ने, 2 फिलोसफर्स ट्रेल ब्रैम्पटन, अक्रॉस ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल,
9: 373 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, शेरिटन कॉलेज बैक प्लाजा। कॉल 905-490-1222।
11: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
12: Hi.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: ओ हाँ भी तू फिर आ गया, तैनू पिछली बार कही गल याद नहीं।
2: साडा देख देख हाल, हथ जोड़ी बैठा काल, बंदे सारी ही रैकेट विच इड़े ने, बाउल केनू वांगू परे।

0: सानू मंजला ना प्यार मेरे हीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

0: This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: लावल ओके
2: यो आपको सूचित किया जाता है कि ये गाना सुन के काफियों की फटकर चार होने वाली है, इसीलिए ये गाने को अंदर खाते में ही सुने। धन्यवाद।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गए।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: na. President Convention Center. President Convention Center.
1: Sweet Mahal walayan da brand new President Convention Center. 100 to leke 700 di capacity. Delicious food, khulli dulli parking, beautiful ambience. Meeting, vyah, birthday party, anniversary hove ya koi bhi function. Pulyo na Sweet Mahal walayan da President Convention Center. 1133 Credit Stone Road, Vaughan. For booking call 416-433-9191.
0: President Convention Center.
2: बाबा जी मेरा ब्याह नहीं हो रहा, कोई मंत्र था फूको बच्चे थे
3: 647-888-6000।
2: बाबा जी आकड़ा मंत्र है
3: बच्चा, ए नंबर चमत्कारी है, जिन्हें मिलाया ओदी समझो ब्याह दी तैयारी है।
2: पक्की गल बाबा जी,
3: बाबे दा घर भी एना नहीं बसाया, एनआरआई मैरिज ब्यूरो।
4: हर कास्ट अते हर प्रोफाइल दे रिश्ते ले परोसे दा नाम एनआरआई मैरिज ब्यूरो। कॉल 647-888-6000 और विजिट nrimb.com।

You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network, Toronto. शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी, योर वॉइस, योर रेडियो स्टार, आ गया फेर तो एक बार, तुहाड़ा अपना, CJMR 1320, CJMR 1320, You're listening to CNN, Toronto, Chawla News Network, Toronto.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: रेट्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान न सुनो।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इत्थों तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अपलायंसेस लगवाना चाहुंदे हो, डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेते रखो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। नंबर 905-799-0045 0045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स।
2: पंजाबी दिल, अंग्रेजी वाइब, CJMR इज बैक अलाइव। CJMR 1320 आ गया होए, छा गया होए।
1: नुड़करो के कैलेडन सब्जी फार्म तो तुसी हर तरह दी ग्रोसरी, इंडियन स्टाइल कईयां दातियां, रंबे, खुरपे, तंगलियां, फोल्डिंग बेड, नवारी पलंग, मूड़े, कुर्सियां, टेबल, भारे थले वाले हर तरह दे हर साइज दे बर्तन तो इलावा ग्रोसरी ते ढेर सारी सेविंग कर सकदे हो। साग बनया बनाया भी मिलदा है, जिन्ना मर्जी लाओ या घर लिया के साग तुसी खुद बनाना है तां कैलेडन सब्जी फार्म ते आओ। 1250 एयरपोर्ट रोड एट मेफील्ड। जानकारी लई कॉल करो 905-840-9000। कैलेडन सब्जी फार्म।
3: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
4: HK Movers,
3: local and long distance, we also ship cars, Kailor transport and moving services.
4: For service with a smile, give us a call.
3: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
4: 416-524-6704 pe.
3: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
5: Long distance moving specialist,
3: HK Movers.
6: HK Movers.
7: Vishwas प्रतीक ना रवि गुलाटी हुन नवे अंदाज विच। रवि गुलाटी लॉ ऑफिस, लीगल सेवावां दा काम हो गया जे सौखा। मारो एक आवाज अजिहे कमां वास्ते। रियल एस्टेट क्लोजिंग, नोटराइजेशन, एफिडेविट्स, डेक्लेरेशन जा स्पॉन्सरशिप लेटर्स, पावर ऑफ अटर्नीज, बच्चा लई कंसेंट लेटर्स। बैरिस्टर सोलिसिटर नोटरी पब्लिक रविंदर पाल सिंह गुलाटी 905-232-8700 905-232-8700। अपॉइंटमेंट वास्ते लॉग इन करो notaryhelp.ca। रवि गुलाटी लॉ ऑफिस, ठीक सलाह बल्ले बल्ले।
8: सॉलिड बम्पर चमका मारे, मठारू वेल्डिंग तो पवा लो सारे। मठारू वेल्डिंग, मठारू वेल्डिंग,
9: मठारू वेल्डिंग पवाओ। मूस बम्पर, डियर बम्पर, डीजल टैंक लॉक, ड्रिलर रैम, टायर रैक, ड्रिलर रिपेयर, अल्युमिनियम प्लेट बम्पर।
10: कॉल सनी मठारू
9: 647-463-55 647-460-6355।
10: मठारू वेल्डिंग, यूनिट 198 रदरफोर्ड।
8: मठारू वेल्डिंग, मठारू वेल्डिंग।
1: डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल इंजरी लॉयर्स। येकर तुहाडा कार, वैन, ट्रक चलाउंदे समय एक्सीडेंट हो गया है या फिर तुसी किसी जगह ते तिलक के डिग पए हो, कसूर तुहाडा है या नहीं, तुसी पहला वांगू हुण काम ते जा अपने व्यापारक अदारे ते नहीं जा सकदे। सारे खर्चे ज्यों दे त्यों बरकरार हन। उपरो इंश्योरेंस कंपनियां भी आनाकानी कर रही हन। तुसी सोच रहे हो करिए ता हुण की करिए, चीचियां ना वटो। बस एक नाम याद रखो, किसी भी तरह दे एक्सीडेंट हो दी सूरत विच तुहाडे हक्कां दा रखवाला। मानसिक पीड़ा दे नाल शरीरक दर्दां दी मलम, डायमंड एंड डायमंड पर्सनल इंजरी लॉयर्स। फ्री सलाह मशवरे लई अज ही कॉल करो अमनदीप चावला 1800-567-HURT-4878 और डायरेक्ट नंबर 416-557-5010 416-557-5010। डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल